0: needs, and contact NZ Flames Baba at Wairaki Road for your hairdressing requirements, and contact T. Nandan of Govai's Driving School if you need driving lessons, and contact Anshul Gupta of Client Real Estate, who can assist you with achieving a better sale for your property. And contact Monil Pratap of Majestic Stays if you are looking for accommodation in the city. And contact Danny from On The Go Eastgate for all mechanical requirements.
1: जी हाँ दोस्तों, साथी है जलसा फीजी रेडियो, है ना, आशा करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा. इट वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर प्रोग्राम्स वी हैड. और आज हमारे जो गेस्ट थे, फिर से हम शुक्रिया करना चाहेंगे वारिस राजपूत, किरत सिंह और लिया मोलिफा. समथिंग डिफरेंट, समथिंग न्यू फॉर क्राइस्टचर्च. और अभी हम जो देख रहे हैं, इट्स बाउंड टू ग्रो, एंड डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी, कीप गोइंग. और अभी हम जब गीत सुने थे इन द बैकग्राउंड, वी आर टॉकिंग टू देम, एंड हम ये भी बात कर रहे थे कि देर एक्चुअली क्लासेस फॉर इज वेल. तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, या आपके पास बच्चे हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न दोज इंस्ट्रूमेंट्स और समथिंग, डू कॉन्टेक्ट अस एंड वी विल रेफर यू टू द टीम. देन दैट वे यू कैन कॉन्टेक्ट देम. और अगर आप सीख भी सकते हो, अगर आप चाहते हो, आई नो मेनी पीपल आर इंटरेस्टेड. और काफ़ी लोग ये भी है कि पंजाब से आए हुए, या तो फिर इंडिया में कहीं से भी आप आते हो, या फिजीज पे आते हैं, एंड दे वॉन्ट टू लर्न दोज थिंग्स, या इंटरेस्ट होगा अगर आपको म्यूजिक, देन डू कॉन्टेक्ट. तो चलो, आज हम आज का प्रोग्राम हम यही ख़त्म करते हैं. शुक्रिया, अलविदा करते हैं. और इस वादे के साथ, जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि हम जुड़ जाएंगे नेक्स्ट सैटरडे इसी समय 5 PM to 6 PM. और इन द मीन टाइम एंजॉय कीजिए, अपने आप का ख्याल रखिए. एंड वीडियो में हम कभी कभार आपको मिलते रहेंगे व्हेन वी हैव सम इम्पोर्टेंट न्यूज़, समाचार, या कुछ आप से शेयर करने के लिए हमारे पास कुछ होता है. वी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड दोज काइंड ऑफ टॉपिक्स, जिससे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिले, एंड समथिंग दैट एड्स वैल्यू टू योर लाइफ.